0: रेडियो सारंग 107.8 FM
1: रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसारा।

0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: गुरु बलाई, रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसार।